याज्ञा करामः। सर्वबलधारियो अनाति अनंतो देवियनी मोक्षांपन मातावन कान्यमारिय तुमांगे गतहा प्राणय ओबिगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद अप सतुटु सिहि करनो तुमियगे दयाबर आज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरु वलिन हा अनवरत मरणेन गलवीम सलसो मनव मेकी दे अपगे स्वामियो जेसु क्रिसु सुहांसे उदिसाम अपट लबेवा आमेन।

0: अला हे दिलियाली हम आला थले बने ई खाती हाले हम आला दिलियाली खाती आला हे के थिला बिना बाहले बने रेले वसुत बड़ा खड़ा वाली बा हे मैंने ले थे मा खातिला दे दिया सोए नवत लदी नशुत बल यीशु स्वांस के नाम में फले आओ
1: देखे मा खातिला रे तेरे बे
0: ई हमाला के दियाले हमा
1: तेरे बे दे दे नवा खातिला हालेलुया
0: इतेलिया माला माती हाना हेले केती लिहा मेले माती लिया ले ओबरे सुधी वेवा स्वामी इन बात से ओबांसी उदाउ कराने किने कनाता